तू मेरे काम लग जा, मैं तेरे काम लग जाना। मैनू तू अपना काम दे दे, मेरा काम तू ले। संसार च ऐसा चल जाता, एक दूसरे के काम आना, जिस काम की जिदी जिनी समर्था हो। बड़े पुराने समयां तो बंदा काम का लैण देण करता है, जेड़ा काम मैं नहीं कर सकता, जेड़ा कर सकता है उन्हूं जाके बेनती करा तू ये कर दे, इहदे बदले च तू जेड़ा काम मैं कर सकना वह मैनू दस। एक दूजे के काम आ सकी। संसार भी सी ऐसा वरते है, पर कई बार ऐसा भी होया कि जिदे ते भरोसा किया।

महाराज सानू एक प्रेरणा बख्शिश कर दे कि जे परस्पर कम आउण दी एक दूजे दा कम करन दी सांझ पाउणी है तू लालू नाल पा के वेख। मालिक तू जो चाहे कर सकना है, तेरी समर्था महान है, करता पुरख जू है, सब कुछ कर सकना है। ते मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैथों कुछ भी नहीं हो सकता। जब कुछ भी नहीं हो सकता, मेरे को एक काम तो हो सकता है कि मैं हाथ बन के तेरे सामने खड़ा हो जावा, अरदास तो हो सकती है। और सच्ची गल जानना, अरदास च खड़े हो जाना ही रब का काम है। ओदे काम लगन का मतलब यह है कि असी ओदे चरणा ते टह पईए, ओदे नाल सांझ पाउण वास्ते प्यार पैदा कर लईए हिरदे में। और जिसले साडे हाथ जुड़ जाण, मस्तक न्यो जाए, इहदे दो अर्थ हुंदे ने। हाथ जुड़ जाण का मतलब है साहिब जी मैथों कुछ नहीं होना, इन्हां हाथां ने कुछ नहीं कर सकना, इन्हां हाथां तो होना कुछ नहीं, ये हाथ बहुत थोड़ी समर्था वाले ने, इन्हां हाथां च ताकत नहीं कुछ कर सकन। आप करता पुरख हो, इन्हां हाथां तो कुछ नहीं होना, ये हाथ बज गए, ये हाथ तेरे सामने जुड़ गए, इन्हां तो कुछ नहीं होना। एक तो दोवें हाथ बन के सत्कार हुंदा है ना, किसे दूसरे का अभिवादन करना हो, आदर करना हो, भी हाथ बनने। लेकिन प्रभु अगे गुरु अगे हाथ बनने का मतलब यह भी हुंदा है कि इन्हां हाथां तो कुछ नहीं होना, बल्कि जिसले मत्था टेक देने हैं, इहदे पिछे भी दो गोज पाद ने। एक तो यह हुंदा है कि मैं दुरमत त्याग के गुरमत लैण आया, लेकिन समर्था के संबंध में भी मत्था टेकने आसी, मत्था टेकने आ पातशाह, इन्हां हाथां तो होना कुछ नहीं, इस दिमाग तो सोचिया भी कुछ नहीं जाना, मैं तो सोच भी ठीक तरह नहीं सकता, मेरे सोचने ची बड़िया भुलां ने, मेरी थां सोचो भी तुसी, मेरी थां ते मेरे वास्ते व्यौंत भी तुसी बनाओ ते करो भी तुसी, ते मैनू सिर्फ अपनी भगती च अपनी अरदास जोड़ दो। मैं तुहाडी अरदास जुड़िया होवां, अरदास अरदाश्त बेनती कर रहा हां, अर्ज कर रहा हां, मैं केवल अरदास जुड़िया होवां। एक ते जुड़ जाए ना बंदा, साहिबां ने विश्वास दृढ़ कराए, बिरथी कदे ना हो गई जन की अरदास, खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है। ये वखरी गल है, मुश्किल तो ये है कि ये बड़ी मुश्किल से होती है, जुड़ना ही औखा है, अरदास जुड़ जाना ही औखा है, नहीं जुड़े रहिंदा तो इहदे वास्ते भी अरदास करिए, बादशाह कर कृपा अपनी भगती लाए, तू मैनू अपनी अरदास जोड़ लै, अपनी भगती नाल मेरी लिव एकाग्र करन दी समर्था मैनू बख्श, फिर मैं अरदास च लगा होवांगा, हाथ बन के मस्तक निवा के मैं तेरे काम लगा होवांगा, भगती च लगा होवांगा। प्रभु दा होर कोई काम साथों थोड़िया नहीं पिया, वाहिगुरू दा कोई काम साडे गोचरा नहीं, प्रभु केवल प्यार चाहुंदा साडे कोल, सतगुरु केवल साडे कोलों प्यार चाहुंदा। ते जिस दिन सिख नूं प्यार करना आ जाए, अरदास करनी आ जावे ना, फिर की हुंदा है, जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता। एक तां हुंदा ना काम हो जाना, काम कर लेना, काम नबेड़ लेना, ते आम तौर ते बंदा कोई काम कर लवे ना, पहला तां करन तों पहला ही थड़कदा हुंदा, घबराया हुंदा, डगमगाउंदा है, ते जे किते काम हो जाए हंब के बह जांदा है, पसीने पूंजदा है, सजना मित्रां नूं कहिंदा है शुक्र करना काम निबड़ गया, बंदा केवल नबेड़ सकदा है। लेकिन सतगुरु जिसले करदा है ते नबेड़दा नहीं, सतगुरु कार्ज सवारदा है। वड्डी वड्याई अचरज सोभा, उस कार्ज विच शोभा हुंदी, मान हुंदा है, सत्कार हुंदा, उस कार्ज दी वड्डी वड्याई हुंदी। कार्ज आया रासे, नानक कहो गुर पूरा भेटियो, सगले दुख बिनासे। जदों सतगुरु कार्ज करना आ जावे, उसले कार्जां च शोभा हुंदी, ते अरदास करन वाले दा मुख उजला हुंदा है। यह गल वखरी है कि अरदास करने वाला बंदा कार्य की संपूर्णता तो बाद यह नहीं कहता मैं काम नबेड़ दिया, बल्कि वह तो यह कहता है।

हूँ बेमुख मंदा, चोर यार जुआर हूँ पर घर जो हंदा। निंदक दुष्ट हराम खो ठग देश ठगंदा, काम क्रोध मद लोभ मोह अंकार करंदा। विश्वास घात

सत्संगलो न आवई। जैसो मन लागे पराधीन हीन दीनता में, साध संग सतगुर सेवा न लगावई। जैसो मन किरत बिरत में मगन होए, साध संग कीर्तन में न ठहरावई।

अनाथ नमो सर तो सो न दानी नमो सो भिखारी मोसो न दीन दयाल न तो सर मोसो अज्ञान न तो सो बिचारी मोसो न पतित न पावन तो सर

अर्जन देव जी का कातिल दरअसल जहांगीर ही सी, पर जहांगीर तो इलावा मुर्तजा खां ते चंदू दा भी हाथ सी। चंदू बादशाह जहांगीर दा शाही दीवान सी। जदों चंदू दी धी मुटियार होई ता उसने अपनी धी वास्ते चंगा वरकर लभन लई एक पांदे ते एक नाई नू जो कुछ समझा के तोरिया है उन्हां बोलां नू ढाडी जथा हे क्यों दसदा है।

गुरु जी दी तारीफ दी गल सुन के चंदू दीवान खुश होने दी बजाय गुस्से विच लोहा लाखा हो गया। माया तारी अत अन्ना बोला, शब्द ना सुने बहरोल कचोला, दे महवाक अनुसार चंदू दीवान कहन लगा, ओ किथे मैं शाही दीवान ते किथे अर्जन देव इक फकीर, किथे राजसी शक्तियां ते किथे साधां दा डेरा, ओ तुसी चुबारे दी इट मोरी नू लाए हो। चंदू दीवान गुस्से विच लोहा लाखा होया कहन लगा, भावे तुसी मेरे मुताबक चोन ठीक नहीं कीती, पर फिर भी मैं तुहाडा मान नहीं तोड़दा, जाओ जाके सगन पा आओ। ए सारियां गल्लां दिल्ली दियां सिख संगतां ने सुन लियां, उन्हां दा मन बड़ा परेशान होया, क्योंकि सच्चा सिख कदे भी अपने गुरु दी निंदिया नहीं सुन सकदा। गुर की निंदा सुने ना कान, कानो घूर के पिछा हटांदा ए, जे तू प्यार नाल नहीं बिठाउण जोगा, हंजू वेख के कास तो हसदा ए, जे तू रोंदिया नू नहीं वरौन जोगा, कानो दुख दे दिला नू दुखांदा ए, जे तू जख्मा ते मलम नहीं लौन जोगा, कानो बंदिया कूड़ विहासदा ए, जे तू नेकियां नहीं कमौन जोगा। दिल्ली दियां सिख संगतां ने गुरु अर्जन देव जी महाराज दे नाम एक चिट्ठी लिख के हे क्यों भेजी आवे।

आपने बड़े प्यार दे नाल जिथे सरवन कीता है रचना पवित्र भी कीती है नाल मिल के कीर्तन कीता है। ए कबीर जी ने ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था ए शब्द विच दसी है और आखिर विच दसिया भाई ए अवस्था किना नू प्राप्त होंदी है जिना नू गुरु की कृपा का सदका नाम की दात मिल जाए ते नाम की कमाई कीत्या ए ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था प्राप्त होंदी है। अल्लो अलख ना जाई लख्या गुर गुर दीना मीठा नाम रूपी गुर जदों गुरु ने मैनू बख्शिया ता फिर मैनू कोई दूसरा पासिया ही नहीं ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बनियारी। सो ए दात किना नू प्राप्त होंदी है मैं अगला शब्द जो तुहाडी भेटा कर रहा वो भाई साहब भाई गुरदास जी दी वार विचों है और भाई साहब गुरदास जी ने गुर सिख दे छे नियम दसे हन इस वार विच। भाई गुरु का सिख कौन अखवाउण दे लायक है जिदे अंदर ए छे गुण हन ओ गुरु का सिख है। उसने आपा परमेश्वर प्रण कर दिता है समझो तो भाई साहब बड़े प्यार नाल ए नियम दस रहे हन और ऐसे गुरसिख तो आप भी बलिहार और सदके हो रहे हैं। कहंदे हन जिदे अंदर आ नियम वसदे हन बेशक मेरे तन दे चमड़े दे जोड़े बना के ऐसे गुरसिखां नूं पहना दिओ जिन्हां दे कदम सेवा सिमरन परोपकार लई उठदे हन। सो आओ बड़ा साधारण जिहा शब्द है पर बड़ा अमोलक खजाना है शब्द दे विच सारयां ने मिल के पढ़ना है। हों तिस घोल घुमाया गुर मत हृदय गरीबी आवे। गरीबी तो भाव है निम्रता। गुरु नानक दे दर ते निम्रता नू गरीबी करके आख्या गया है। गरीबी नू किसे कंगाली या भुखमरी नहीं समझना। गुरु नानक दे दर ते बाणी दे विच निम्रता नू गरीबी आख्या गया है। कर किरपा जिसके हिरदे गरीबी वसावे नानक इहां मुकत आगे सुख पावे। सो आओ सारे प्यार दे नाल भाई साहब ने जो एक गुरसिखी दे गुरमत दे छे नियम दसे हन बड़े प्यार दे नाल सरवन करिए।

सुध जब ते हम तरी बचन गुरुदेह हमारे ऊत ए है प्राण तोहे प्राण जब लग घट थारे निज नारी के संग नेहो।

एका नारी जति है, एका नारी जति है, पर नारी ती पहन वखाने, वेख पराईयां चंगियां, मामा पहना तियां जाने। ये है गुरु जी। पहला नियम निम्रता धारण करनी, सेवा सिमरन परपकार करदियां होयां भी किसी गल दा मन विच हंकार ना आवे। दूसरा नियम अपने जीवन नूं पवित्र रखना, साहिब कलगीधर पातशाह दा वचन आपने श्रवण कीता है। साहिब गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह बख्शिश कर रहे हन, कहिंदे हन जदों मेरे गुरुदेव पिता तिलक और जंजू दे राखे लई हिंद दा धर्म बचाउण लई अपना बलिदान देण वास्ते दिल्ली जाण लगे तां मेरे पासों इक वचन लिया, शुद्ध जब ते हम तरी वचन गुरुदेह हमारे, पूत ए है प्रण तोहे। आख्या मेरे बच्चे इक मैनू प्रण दे ते ओ प्राण तेरा प्राणा दे नाल निभ जावे, श्वासा दे नाल निभ जावे। ए प्रण कलगीधर पातशाह ने फिर गुरसिखा को लिया कि मेरा सिख कौन है जिसका जीवन ऐसा पवित्र है। गुरुदेव पिता कहिंदे हन के पूत ए है प्रण तोहे, प्राण जब लग घट थारे, निज नारी के संग नेहो तुम नित बढ़ियो, पर नारी की सेज भूल छुपने होना जी। अपने जीवन नू पवित्र रखना ए गुरसिखी दा दूसरा नियम है। आओ अगले नियम श्रवण करो प्यार दे नाल।

हवे। पराई वस्तु कई है उसनू चुक के वर्त लेना तो पासे रहा। गुरु का सिख ऐसी वस्तु नू हाथ भी नहीं लाउंदा, भाव किसे दी अमानत विच ख्यानत नहीं करता, किसे दी चोरी नहीं करता। गुरु का सिख जो है पर दरबे नू हाथ ना लावे। ए गुरसिखी दा तीसरा नियम है। पहला नियम निम्रता धारण करनी, दूसरा नियम अपने जीवन नू पवित्र रखना, तीसरा नियम पराई अमानत विच ख्यानत ना करनी। हुण चौथा नियम भाई साहब दस रहे हन।

0: चौथ नियम गुरु का सिख ना किसी की निंदा करदा है ना सुनदा है। किसी की निंदा करनी इस तरह है कि उदे अवगुणा का भार अपने सिर ते लै लां। भाव किसी ने कूड़े की टोकरी चकी होवे ते खाम खा उदे सिर तो चुक के अपने सिर ते रख लै। ऐसा है किसी की निंदा करनी या किसी की निंदा सुननी। तो हजूर बाणी विच बख्शिश करते हैं कि निंदा भली किसे की नहीं, पर कौन करदे हन मन मुख मुगद कर मुंह काले तिन निंदका नरके कोर पम। इसलिए गुरु का सिख गुरसिखी गुरसिख सुन अंदरों स्याणा बारों फोला। गुरु का सिख बारों फोला है, अंदरों स्याणा है। किस लई? किसे नूं नुकसान पहुंचाण लई नहीं। अंदरों स्याणा इस लई है भई जिथे तां गुरु की बाणी दी विचार हो रही है कन दे के सुनदा है, मन दे के सुनदा है। ते जदों निंदिया चुगली शुरू हो जांदी है कहिंदा मैं कुछ सुनाई नहीं देंदा मैं चलदा हां। सत संगत बोलो श्री
1: वाहिगुरु।
0: एक गुरसिखी दा चौथा नियम, पहला नियम निम्रता, दूसरा अपने जीवन नूं पवित्र रखना, तीसरा पर दरबे नूं हथ ना लावे, चौथा नियम गुरु का सिख ना किसे दी निंदा करदा ना सुनदा है। ऐसे गुरु के सिख लई भाई साहब कहंदे हन बेशक मेरे तन दे चमड़े दे जोड़े बनवा के ऐसे गुरसिख नूं पहना दे गुरमत तेरी दे।

अल्प आहार सुलभ सी निंद्रा दया क्षमा तन प्रीत शील संतोख सदा निर्बाहे वो होए गोत्रे गुण अतीत थोड़ा समय थोड़ा ही खावे गुर सिख जोगी जाग दे गुर सिख जोगी जाग दे माया अंदर करण उदासी

अगर आप सारे मैं पिछले की इतना भी क्या है इसनु सचमुच एक सत्संग समझते हुए इन्हों शब्दों के नाल अपनी आत्मक अवस्था को उच्चा करने की कोशिश करिए। इन शब्दों तो असी अपनी तस्वीर देख सकते हैं। मैं आप जी के सामने अज के इस कीर्तन च एक शीशा पेश करना चाह रहा हाँ, जिस शीशे दे विच असी अपने आप को देख सकी। मैं आप जी के सामने साढ़े सतगुरुओं की जो अंदरली अवस्था है उन्हां दी स्टेट ऑफ माइंड वो रख रहा हाँ, ताकि सानू कुछ ना कुछ से चोट लगे कि असी क्यों जहे हाँ, अते जिन्हां दे असी अपने आप नू होण दा दावा दिंदे हाँ उन्हां दे हिरदे किहों जहे हन। आओ हुण इसे ही शब्द से जिस तरह भगत कबीर जी ने अपने अंदरली अवस्था इस दृष्टांत दे नाल पेश की है, हुण मैं गुरु अर्जन देव जी महाराज दे कुछ एक प्रमाण आप जी दे सामने रखण लगा हाँ, अते आपने देखना कि गुरु अर्जन देव जी महाराज की हार्दिक अवस्था जो है वह किस किस्म

तेरे अंदर कदे वैराग, तेरे अंदर कदे उदासी, तेरे अंदर कदे उपरामता आउंदी ही नहीं है। पाप उन्होंने कहने का यह है कि जदों अकाल पुरख वाहिगुरु का प्रेम किसी लग जाए तो उस दे अंदर सब तो पहली चीज की होंगी है, बाकी तमाम चीजों के प्रति थोड़ी रुचि घटनी शुरू हो जाती है। जगत के प्रति संसारी चीजों लिए एक उपरामता आनी शुरू हो जाती है। उस उत्ते गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का आप जी को एक जो श्लोक है वह सुनाना चाहना, कहते हैं

मैं इस सारी दुनिया की हालत देख के मेरा तो मन उदास हो गया है। मैनू तो इस दे विचों कोई सार नजर ही नहीं आता, मैनू तो इस दे विचों कोई तत् नजर ही नहीं आता, मैनू तो इस दे विचों कोई काम वाली शायद नजर ही नहीं आती। देखते हैं कि हार जरे जो लाकरी, केस जरे जो काश, ये जग जरता देख के पहो कबीर उदास। तो गुरु महाराज सानू ये समझा रहे हैं कि ऐ इंसान तेरा चित करे ये तमाम कुछ जानदा होया देख के निराश नहीं होंदा, तेरे अंदर कदे उपरामता नहीं आती, तेरा चित कदे इस तो कोई डूंगी चीज नहीं लभदा, तेरा चित कदे अजिही चीज नहीं लभदा जिहड़ी कि हमेशा ही कायम रहे, ना कि तू उन्हां चीजां नूं लभदा रहना है जिहड़ियां ने बिनसी जाणा है। तो सतसंग जी अज दी सारी विचार दे विच जो सानूं सुनेहा मिल रहा है, जो सानूं उपदेश मिल रहा है, वो ये है कि गुरु महाराज कहते हैं उस इंसान दे पाक अच्छे हैं। बस इस दे नाल मैं अपने विचार नूं कंक्लूड करनी चाहना। गुरुआं दी नजर दे विच वो इंसान बहुत फॉर्चुनेट है, वो इंसान बहुत ही भागा वाला है, बहुत ही किस्मत वाला है जेदा दिल कुछ होर भी लभे, जेदा चित इना तमाम दुनिया के खाणियां दे नाल भर गया होवे, पोशाकां दे नाल भर गया होवे, जिहदी रुचि बदल गई होवे। असी यह सुनदिया सुनदिया अंदर यह देखना है कि साडी रुचि बदली है या नहीं बदली। असी अपने आप से सवाल करना है कि साडी रुचि की है, असी जिंदगी च की लभदे हां, किस किस्म की साडी रुचि है, अते जिस किस्म की रुचि हुंदी है उसे किस्म का इंसान हुंदा है। आ हुण गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का एक श्लोक, इस दे उत्ते जो मोर लगांदे हन अपने एक श्लोक के द्वारा उसनूं सुनो।

है लेकिन लगन अंदरली किसी होर पासे भी हो जाती है। सुरत जो है वह किसी होर पासे जानी शुरू हो जाती है। रुचि जो है बदल जाती है। साड़ी रुचि खाने च पहनन च बोलन च अते दुनियावी गोरख धंधियां दे विच ही उलझी रहती है। गुरु साहब कहते हैं मिल माया सुरत गवाई। साड़ी जो सुरती है वह माया दे मिलके विच मिलके गवाची रहती है। लेकिन गुरु साहब कहते हैं जे माया ममता तजे सब ते भय उदास पौ नानक सुन रे मना ते कत ब्रह्म निवास। कहते हैं वो इंसान बहुत पाकशील है जैसा चित जो है दुनिया दे विच रहिंदा रहिंदा ही गुरु दी मत दे नाल गुरु दी बाणी दे नाल इन्हां तमाम पदार्थक दुनियावी स्वादां दे विचों उठ के उच्चा उठ के जिस दी रुचि जो है इन्हां चीज़ां वलों घटनी शुरू हो जाती है अते गुरु दी मत दे वल नूं वधनी शुरू हो जाती है। जिहड़ियां चीज़ां वल रुचि घटनी शुरू हो जाती है उन्हां वलों असीं उपराम होने शुरू हो जाने हां अते जिस पासे वालों साड़ी रुचि होनी शुरू हो जाती है वह ना मिले तो साढ़े दिल अंदर एक उदासी आनी शुरू हो जाती है। बाणी का एक खास नुक्ता आप जी के सामने मैं रखन लगा हाँ। कहते हैं बिन बैराग न छूट समाया। जितनी देर तक साढ़े अंदर बैराग नहीं आता उतनी देर तक असी माया तो ही परे नहीं जा सकते। माया का जो गलबा साढ़े होते हैं उस दे विच असी आजाद नहीं हो सकते। असी यह देखना है कि साडे अंदर बैराग है या नहीं है। बैराग बहुत उच्ची अवस्था है। लेकिन आओ अरदास करिए कि गुरु साहब सानू सचमुच बैराग बख्शन। बैराग एक ऐसी दौलत है। एक फ्री साहब का श्लोक उचारना सुनाना आप नूं कहिंदे हन बिरहा बिरहा आखी है बिरहा तू सुल्तान जित तन बिरहो ना उपजै सो तन जान मसान। कहते जिस तन के अंदर बिरहो नहीं जिस तन के अंदर वैराग नहीं कहते हैं ओ तन इस तरह है जिस तरह मसाणा की धरती हो कि असी सारे साडे सारे पास तन है लेकिन कितने साडे तन मसाणा की धरती वर्गे ही तो नहीं हन। अगर साडे अंदर वैराग नहीं है अगर साडी जबान सिर्फ खाणियां दे चस्कियां दे नाल हाले नहीं परी तो फिर साडा तन जो है ये मसाणा की धरती वर्गा ही है। अगर साडा ये शरीर दुनियावी सुखां अते भोगां साडा जो मन है ये मोह माया ममता दे विचों ही हाले उच्चा नहीं उठिया तो फिर साडा तन जो है ये वैराग तो हीणा है अते वैराग तो हीणे तन नूं गुरबाणी कहिंदी है सो तन जान मसान। लेकिन जिन्हां तनां दे विच वैराग आ जाता है उन्हां दे वास्ते बाणी का एक श्लोक है कहिंदे न जां भौ पाए अपना वैराग उपजे मन आए। वैरागे ते हर पाइए बैरागे ते हर पाइए हर स्यों रहे समाए। तो अखीर दे विच गुरु साहिब दा एक जो दो लाइना दा पंक्तियां दा एक उच्चारण आप जी दे सामने रख के मैं समाप्त करदा हां। गुरु साहिब कहिंदे से गावै जिन मस्तक भाग है से गावै जिन मस्तक भाग है पाए सच्चे बैराग। इत्थे उन्होंने बहुत गहरी गल कही है। कहिंदे हन जिन्हां दे अंदर बहुत गुरु का प्रभु परमात्मा का प्यार है उही ही प्यार अते वैराग दे विच आ के गांदे हन अते उन्हां दा गाना ही जो है कहिंदे हन ओह सफला है। ते गावै जिन मस्तक भाग है पाए सच्चे वैराग अंदिन राते गुण रवे निरपौ गुर लिव लाग। सारी जिंदगी दे विच चाहे कुछ भी करन उन्हां दी जो लिव है वह हमेशा गुरु दे नाल लगी रहिंदी है। तो आओ असीं सारे आपो अपने जीवन नूं पड़तालिया करिए इसका लेखा जोखा करिए अपने अंदर में थोड़ा एग्जामिन करिए कि साडे अंदर गुरु का वैराग है साडे अंदर इन्हां शब्दां दे विच एक जो प्रेम भरी अवस्था दसी गई है कि असी उस किस्म की अवस्था के मालक हाँ जां असी सिर्फ सुन सुनाण वालियां तक ही हैं। अगर उत्थों तक ही हैं तो आओ अगां वधन की कोशिश करिए। उन्होंने काका कारे बेग मलीजे अपने राम प्यारे कबीर साहब कहिंदे ने कां उड़ मते किते मेरा प्यारा आंदा होवे। असी ये गल्लां नूं इन्हां शब्दां नूं सुनदे सुनदे अपने अंदर देखिए किते खाली ही तां नहीं किते सखणे ही तां नहीं। गुरु साहब ने कहा अंदर खाली प्रेम बिन अंदर खाली प्रेम बिन ढह ढेर।

प्रभ कीजे कृपा निधान, हम हर गुण गावेंगे हौ तुमरी करो नित आस, प्रभ मुए कब गल लावेंगे। कदों ओ दिन आएगा जदों तू मैनु अपने गले लावेंगा, गुरु दे गले लगी है सारा शरीर पवित्र हो जांदा है, ते जे गुरु ग्रंथ साहिब जी दे गले लगी है तन भी पवित्र ते मन भी पवित्र। एक बारी आखो प्यार नाल सतनाम।

प्रेम सहित गल लावे। छोटी उम्र दा कोई 10 साल दा ये बच्चा पता नहीं कौन सी जो इस दे नाल नाल अज गाउंदा आ रहा है। प्रेम सहित गल लावे अज सारी खेल भुल गई। अगे तां बड़ी चा नाल खेलदा सी ते कई बार खेलदियां खेलदियां कोयला हो जांदा सी, पर अज तां सूरज भी नहीं डुबिया, घर आ गया, चुप है। मां ने पुछया, बेटा अगे जदों तू खेल के आना तेनू भुख लगती है, तू रोटी मंगना या ये गल कहना कि मैनू प्यास लगी है पानी पीना है। अज तेनू भुख नहीं लगी, तेनू प्यास नहीं लगी, पर ये अजे भी चुप है। मां होर बड़ी परेशान है, प्यार किया, चोली विच लिया, पुछया अज परेशान क्यों है, क्योंकि इको ही एक तो पुत्र सी। मां पुछदी है कि अज तू जल्दी क्यों घर आ गए, कहन लगा मां कोई कह रहा सी अज प्रेम सहित गल लावे। कौन है वो गले लाण वाला? मैं सोच रहा सी कि पिता दा साया ते बचपन तो ही उठ गया सिर तो, हुण कौन गले लाएगा? जिन्हां बच्चियां दे पिता घर विच हुंदे ने ओ खेलण तो बाद अपने पिता दे गले जाके लगदे ने।

कमल चित पावर कर। अपना जिहड़ा चित है ना गुरु के चरणा के नाल एक मिक करके पवरा बन जाता है।

ऐसा गुरसिख मिल जाए ओदे मिलिया पाप पुनिठ दा भाव है पापा दा भी नाश हो जांदा है। भाई साहब कहते ने गुरसिख दा जीवन ऐसा होवे ते मैं उस तो

0: गुरु रामदास, धन गुरु अमरदास, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास। मैं ठीक हो गया, मेरा रोग तो उतर गया, मैं चल फिर सकता। धन रजनी, एक तेरे सदक का फल है जिहड़ा अज मैनू नवा जीवन मिलिया। रजनी रजनी, मैं ठीक हो गया, मैं चल फिर सकता रजनी, मेरा रोग तो उतर गया रजनी, मैं ठीक हो गया।
1: कौन हो तुसी?
0: मैं कौन है? तुसी मैं पछाणिया नहीं रजनी जी?
1: मैं कहनी मेरे पति जिन्होंने मैं इतने छटके गई सी, कितने ने कितने ने मेरे पति?
0: मैं ही थोड़ा पति है रजनी जी, थोड़ा पिंगला। तुसी मैं चिंतपुर नहीं लग गए, तुसी मैं संजी के दर्शन कराए, तुसी मैं गोंदवाल लग गए, तुसी मैं छबीर वाले बाबा जी तो पानी पिया। मैं थोड़ा पति है, मैं थोड़ा पिंगला है रजनी जी, मैं थोड़ा पिंगला।
1: यह तो ठीक है, पर थोड़ा रोग किवें ठीक होया?
0: यह सारी करामात इस जल्दी है। थोड़े जाने तो बाद मेरे कन्ना फिर वही आवाज आई, कागो हंस करे, तो मैं रिड़दा रिड़दा ऐ छपड़ी के कंडे ते आ गया और टाणी नूं फड़ के पानी च उतर गया। जब बाहर आया तो मेरे सारे जख्म तोते पए सन।
1: तुसी तुसी टाणी नूं फड़ के पानी च गए सी ना?
0: हां।
1: केरे हाथ नाल?
0: ऐस नाल।
1: अच्छा, तां फिर तुसी ऐस हाथ नूं भी पानी च पाओ, मैं अपनी अखां नाल इस जल दा चमत्कार देखांगी।
0: आओ मेरे नाल।

0: ही परमात्मा, तू मेरी पुकार सुन ले। माता के दरबार में क्या सपना साकार कर देता। तेरी लीला परम्पारे। तन गुरु अमरदास।
1: तन गुरु रामदास। रजनी
0: स्वामी,